मोहे कभौं श्याम हैं शंकर

कथा साट का नारद देखे करम की रेखा सात मन से भजलो रे हरी तन से भजलो रे हरी।

अवतारे भजन करो हरे जगत जगतारे भजन।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। और लू जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो

0: रही है। अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज जुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
3: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ, शाही रसोइये।
3: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
3: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
4: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
5: महाराज ने चम्मच को उठाया,
6: पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
7: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
5: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो जी।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू गोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है। और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, मिर्च, बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा, हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
0: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
0: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगली गुगली, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
0: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
0: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊं?
2: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
0: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
0: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
0: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
2: कल हमारी गली में पिकनिक थी। सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियां क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय मेरा नाम है चमकी और आप?
3: अब्दुल रहमान।
2: अब्दुल रहमान जी पौष्टिक खाना क्या होता है?
3: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी।
2: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
3: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
2: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
4: मेरा नाम शांति है।
2: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जियां अच्छी नहीं लगती?
4: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
2: हाँ सिर्फ आलू? हाँ फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
4: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
2: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय

0: का नाम है लक्ष्मी बाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
0: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देती हूँ।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियाँ खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
2: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
2: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
3: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं?
0: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालू 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए मैं उनको निकाल के रख देती हूँ। पर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय
4: बाय। मजा आया ना।

0: तो दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी हरी सब्जी, मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है, जैसे तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते कुछ लोग
1: जी। तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए, और दूसरी तरह जैसे पालक है तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पनीर से पालक पनीर ही बनती है ना तो वो वैसा ही बना सकते हैं तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए
1: जी। आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले, और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।

रात आई घर की हुलिया बदल गई। जितना से आई घर की हुलिया बदल गई। लड़का और बिटियन का ऐसी अकल गई। लड़का और बिटियन का ऐसी अकल।

गई सरपंच गुरुआ की गली गली में बरसा दो कंचन, गुरुआ की गली गली में बरसा दो कंचन।

जीवन में ज्ञान हो, पढ़वे और लिखवे पे जीवन में ज्ञान हो, वीरन बिन पढ़े लिखे भोर

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानत हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होत हैगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथा है ना कि अपन सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए। और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो उसके बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चला देंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उसके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। कह के पहुंचे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर करवे चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार,

ਪਾਈ ਕੌਸਲਿਆ ਦੀ ਪਦ ਦੀ ਪਾਈ ਗੋਦੀ ਖੇਲਤ ਰਹਿ ਰਗ ਰਾਈ।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओ, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की। फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप

0: मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया लेकिन पट 9 दिन में, 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
0: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है।
1: बिल्कुल।
0: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 22 से 51 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मुहि जबही और जन्म कोटि अघनाशे हो तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है। और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है और यहाँ पर 22 से 51 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति है वो सब दक्षिणावर्ती है, सब दक्षिणावर्ती हैं। और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में? कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक।
1: अच्छा। हमने

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गाँव की कोई विशेषता है, आपके गाँव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9425-14-17-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुना थे कहानी को, लेते कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवते राजन की कुमार और एक हटे बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हटे राजा के कुमार,
1: एक हटे बानिया के।
2: हाँ जी, दो जने हो गए।
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती। उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम का, तो पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबह खून चले जावे।
2: दो ही के दो
1: शिकार भी अपना घूरो मस्के, भी अपना घूरो मस्के। अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बर्ती तुम्हें फिर करना है।
2: अच्छा,
1: तो कल के दिन में भी बोले कर ले बीरन। बोले अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमें ससुराल देखे थे। अब राजन को बस बीरन थे अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा,
1: और भी है वास्ता बीरन और वास्ता दोनों जने हो कहे के राजा हो वास्ता। तो बस बीरन ने जी से बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाए, कले कबैया कहाँ के जाने से रहे कले ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव घेगो से नाव को रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्किया थे।
2: जा सही के या
1: नाव को सब पतो है।
2: हाँ,
1: तो नाव को तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो।
2: ऐसा
1: सो बस अब बीरन के बार बन गए। अब राजन के बादशाह के बनने। तो बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोले कर ले का बोले कर ले ये राजन के राजा। बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है, हमारे हम किसे चले जाओ। अरे बोले कर ले राजन के राजा, आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं है।
2: अच्छा,
1: हाँ तो बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा,
1: के नाव होगा बादशाह होगा बीरन होगा, अब तीन जने की दोस्ती हो। बस सब चलिए ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीरन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा,
1: गली में से बटी हटी सुबह उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी। तो बीरन गाँव पानी पीवी के लाने तो पानी बीजक बाँचो।
2: अच्छा,
1: बीजक बाँचो बाद में सुबह में गली अलग अलग। बीरन हो बदमाश। बीरन बदमाश हो।
2: अच्छा,
1: तो बीरन ने कहा करो किस्सा के पानी पी के बावरी में वो वह बीजक को भरा दो।
2: ले उसका
1: अगर हमारा अगर जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जब बातें ले सम छूट गो इसे के हमारे भी ससारे चलेंगे
2: चलेंगे
1: तीनों ही
2: तीनों ही।
1: हाँ, जा तो बीजन बदमाशी के रहो। हाँ, तो बस अब राजा पानी पी गए। हाँ, तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में है। सुबह में बीजक में गिलाव लगो रहा है। तो राजन ने अपने खोबन की उली चुली के भाई
2: धो दाओ
1: और फिर उगे बाँचो बाँचो भाई। सुबह ने उन्हें प्रधान पूरो लिखो कि जा राजन के कुंवर को रास्ता गई वो जब बीरन के कुंवर को रास्ता गई। दोनों जने तो बोले कर ले तुम बीरन। बोले कर ये राजन के राजा। बोले तू बहुत बदमाश है। बोले कर ले पुरखन को बीजक तेने मिटा दिया है। हट कर ले कि हम अपनी ससुराल जाते हैं।

0: लग गई।
1: अच्छा
0: बोले कल्ला जो पहले आज विदा करा के वो जज बाउली का ठहरे क्या दिन किसी को बीत जाए।
1: सही सही
0: तो बस बेटे सब भी अपनी ससुराल चले गए।
1: हाँ।
0: और भी अपनी ससुराल कल्ला वो जी ससुराल का नाव।
1: हाँ।
0: बोले कल्ला जी राजन के संग चले।
1: सही है।
0: अरे हमारे वर के संग का चले हम सेठ आदमी।
1: हाँ।
0: और राजन के संग जी और हेल्पर चलते हैं।
1: हाँ।
0: तो राजन की कुमार और सताई का दो जने जा रहे हो अपनी ससुराल चले रहे।
1: हाँ।
0: अब सब राजन के कुमार जा रहे सो बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास।
1: अच्छा
0: बोले कल्ले सताई का बोले कल्ले के ये राजन के राजा कल्ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर शरीर से प्राण निकल जा रहा
1: है
0: इसे पानी को देखो। बोली कर राजन के राजा बारह कोस में ना पानी ना माय पानी अपन वन में हेंगे। बोली कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना गा के। बोली कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पर चढ़ी सुबह पे देखते भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा था ऊंची जांगा हो भी चढ़ी सो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल।
0: बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जल्दी हो गया उसे। बोले कल चल चल ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी और चल जा अरे खुल जाए सुबह जन में दे पाई खुली से जीत गए कि आराम से भी नगर चले गए। उतरे काकस्ता हाथों के जानवर लड़की राजन को भी आई थी वो नदिया में स्नान कर रही थी।
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही थी। तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल सुताई अक्का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ये तो ठीक है तुम ले आए। बोले कल महाराज जाके ना पूछो पानी पी लो तुम। बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी हो थे कि मचो सचो भर के आ गए। बोले कल महाराज कल वो तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही है तो उसके साथ हमारे मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचो सचो भर लिया तो हम खुद प्यास में मर जा रहे हैं। अरे बोले कल पकड़ा गया पानी सुबह पानी बगरा के और दूर जने तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के वाले वो कल्ले सुदायक का बोले कल्ले कहिए राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूर है जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को। बोले कल्ले कहो उनने कही

0: देवता ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जावा,
2: राजन ने कही जावा,
1: राजन ने कही जावा।
0: हाँ
1: तो उन्हें फिर कही उन्हें, अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो।
2: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही,
1: जो नहा रही बा बोल रही है।
0: हाँ।

0: या कबूले कर ले राजन के राजा।
1: हाँ,
0: सुनो हमारी बात, अभी से बोल दो ना।
1: सही है,
0: अभी से बोल दो ना, बोलो कब का बना रहे वाले
1: बताओ।
0: हैं?
1: सही कही,
0: बोले कर ले नहीं, अबे तो हम और बोल देंगे।
1: हाँ,
0: अब राजा बोल रहे
1: हैं।
0: भूले

0: कितने गली बता दो सो काउ के द्वारे में
1: आप पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दीजिए। अब जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए, इनको बदन शरीर है कैसा, मुंह करने माइक हो और पीठ करें इंसान हो कही के। अब जाइए से बताए सुनने के बाद माँ से बोली।

0: अच्छा
1: हाँ ने नली ना बताई ना बाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा
0: अच्छा
1: अपने पर्दा भीतर ले
0: हाँ
1: मैं साबुन में है किसी गली तो पूछ ही ली गली पूछ के उनने घोरो बड़ा सब गांव के लाने तैयार हो गए अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जो बाने जल्दी पल्ली सफरो और सफर खोर के और बाप ने जेल चली जो ने ये हकी से जात है भवन द्वार में छोटेगढ़ का को देखो तो ससुराल सुबह द्वार है अड़ी तो उनने अब भाप पहुंची घरे सो भी घरवाओं को बंद हो अब भाभी से बोली भी

0: भाभी ने कही ऊंचे कंधे लंडी नीचे करो बातन जिन बतराओ
1: ऐसे
0: और तुम्हारी आ गए चाल
1: अब लुबग्गा आ गए तो
0: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बने
1: ऐसा
0: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपनी नाश्ता बनाने के लाने तैयारी की तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
1: अच्छा
0: बोले कलर देखो अपन को कगवा गेल कुमार बनाए थी
1: बिल्कुल
0: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने
1: सही कह रहे
0: अब खुला खुला से अभी नहीं खुलो
1: हाँ
0: मैं तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की सुबह सवती सोने व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के आज्ञा दे गई भोजन के लाना तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सोने चाहे एक लो चाहे खाई हो चाहे दो खाई हो और वहां से बने ठना ना जवाब ठोको
1: अच्छा
0: ठोकने ना तो कैसे खोले
1: बाबा सही है।

0: मिलता थी सरकार के माए कच्ची, अब अभी खुलवाओ के जई है ये।
1: हां सही कह
0: रहे हैं, जब बात जई है, जब बाबा ने बात खोली तो बोले समझ गए, तो उनने मार ताकी मारी सरकार के। हां वो वसुता जा कान पे झटपट जो

0: कोई रिश्तेदारी है वो जा तुम दिन चटकाओ और टूटे से जल जुड़े नहीं वो जुड़े सुन में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जा मैं तो बस ये रुकते हैं
1: फिर नहीं गए
0: उके ते रुक गए जो ने बपरोस की
1: हां परोस की ने कही जवाब हां
0: तो अब परोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराओ तो केर बेर को संग है
1: सही है
0: बेर बढ़ के जाओ
1: हां
0: तो उनने हकी सो जैसे कच्ची पुटिया पर मूत की वही रानास में ले गए
1: हाँ फिर कमाई खोल पुटे पाल जाले गए
0: मैं को वही जहाँ उनकी राना सकती वो फिर पहुँच गए भाई सतखंडा पे पहुँच गए तो अब उनने सोच रानी कि अगर भोजन भी है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनी थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज के सुनकर मूर बोल गई बन गई पड़ोसन दो हाथ दे रही संक

लगे ही खाओ नहीं तो भूर खाए, इसे तुम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बाने फिर दो जाकर कहो।

नाव से कह के वाणी खुल गई। हां के वाणी खुल गई। अब जो दो है सुनो साधु ने, हां साधु ने सुनो दोहा, साधु के रामन से

0: शंख बजे से साधु जगे, बम घले राजपूत। अगर इतने में ते बम घर रहो, वो नहीं जग रहो तो पूछ कब पूछे।
1: सही है, है? के का हो रहा,
0: का हो रहा,
1: कते दुनिया भगत जागे रु विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो पड़ोस में पतो होगा। हाँ। रानी राजा के पास मिल भी गई। अब फिर की दो हब कह रही है।

0: से लड़ की भाली रेसो मेरी पे ब्याए जी। अरे ऐसी सासो का काम किया थी तेरी कुखन बाजाई हो जाती, ऐसे सपूत जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोलती
0: ये तो गड़िया है ना, सुबह पटक थार और भी भाग गया। जब थार पटक के मैं भाग गया सुबह अपने बैठ गया, रात को समझ जा कहाँ जा रहे जो सवीरम हो सोने घोरो मस्को उस चलिए। सो ससुर साहब ने कही करी दीवान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे हैं। ठीक है, सुबह भी रहती है डट गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीना सुनने सजाई तो उम्मे विदा उनकी कई गो में खाना पीना सब वो महीना भर की लाने रखा था, खा पी जे घर चले गई। बस अब अभी हती सो अब पीना हकावे बारे हती सो जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भग गए छोड़ के। अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काल है खबा जी ने हकाई सुबह हका के वो बस अब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पीड़ो रहे से उतरे बस गए, शाम हो गई से बस गए। बस के में अब बोले कल्ले सुनो सुधा एक का बोले कल्ले का कल्ले ही पापन को नहीं छोड़ जाने यही रुकता है। अब बस चल रही थी, बस चल रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सुधा एक का से कही के सुधा एक का हम ऑर्डर दौरा नहीं है के पति लगाओ तो सताई का गए से तीन पात में लगा दिया, एक अपन को एक राजन को एक रानी को। तो बस बेहते कर ले क्यों बे ये तीन पात में कहाँ खोल लिया, बोले कर ले एक आपको एक हमको एक रानी। अरे बोले कर ले रानी की फार के फिर जमाए तो रानी की फार के मार फिर गए। अब बस पाता से लग के आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं, हैं? इसे का करें जब ये सुबह घोड़े की पछाई की बड्डूर बनी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाई बड्डूर कि ये भग हैं तो जब ईर टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू किया ले। सुबह सुनने के सुबह घोड़ो भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बड्डूर तनी दूर सो नेक चावा को ठोको घोरी में सुबह दूर टूटी। सो उनने कही रानी ने

जनरल दृष्टि हर में बुझा दी हमें, हम ना जई गांव के रहे ना बई गांव के रहे, अब ये सुन नलवारे के मेरे किसी चले गए, मैं अपने भगवान

दिए गए। अब रानी ने अति सुबह पीनस को बेग घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाओ थे मैं पीनस को हकाओ थे रानी तो हका जो बजिया से कचुवती सो राजा गिलंद की बाग में भी जा रही सो अन्य भज्जा घर वाले नाय के टूपी माय की बोलन्या टूपी तो बस भी अति जो रानी वो तो मालिन है जिसको मालिन बोली बोली कर लेगा ये कौन कहाँ की पापे नारे कहती है तूने एक मोर रानी ने वो मालिन को दे तो न्यारी की तो दादी की बहू में भीतर काट रहे हैं बाग में बीरा दे दे अपने अभी तो राजन की बेटी तू तो कछु मोरन को कछु टूटो तो यही है कि तो बस मिला कि तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सो ऐसे कछु बिलादना हो गए दुकान दुकान तो एक दिन आओ अब उनकी बेटी हटी राजन की यानी जमदीव नाव तो का नाव तो बेटी को जमदीव जमती नाव तो बेटी को सो बिन बे फूलन की तुला तो लगती बा सो मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन को ले जावे सो राजन ने हकी सोची के मालन तो इते आओ तो हम आज बगीचा घूमने आए सो बगीचा घूमन गए भी सोचे बा राजन की लड़की रहे रहे सो राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो या है नहीं है तो कहो राजा की लड़की सो जैसे तैसे अपने घरे पहुंची घरे पहुंची सो घरे पहुंच पाच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ तो उनने डाली उन्हें लगाई अब बादशाह ने हती सो राजन की पियन नहीं होती बाबे नहीं होता कम कम अबे नहीं होता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह था सो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसु बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह था सो बिन ने सोची अगर बिन तो हमारी खुलवा लिया उसी बन में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा सो उन्हें हर सांस लगी तो बीरन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सुनाओ से पूछी जा रहा है बोले क्यों खवास रखा बोले कले कहिए राजा कले कारण का है ये को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कले ये रानी को बन में छोड़िया है और भगिया है तो उनने अति से घोरो उनने सजो और बीरन ने सजो पहुंची वो निकल ले चलो बताओ कि ते कौन छाड़ में छोड़ी फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह ये गए दोनों जने नाव नींगो वे दो ही गए सो वो निकल ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धरी सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद की बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है राजा सुन तो तुम्हें जान से मारा ले आराम से मालिन को साजा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दिया कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गए राजा गिलंद की ठीक है कि अब अरो कमाओ ने बादशाह तो बदमाश होते ही है तो को जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें ऊपर दिली साड़ी करी सो मालिन है कि जो उन्हें पहुंच राजन ने बोली कल दो घोरे वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनने सब नाश कर दिया बगीचा को तो उनमें छिड़ गया चलिए तुमको राजा बुला रहा है बोले कर ले हाउ साहब जब तो भी ऊँची हती भीलपुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी ले के बोले उनकी गैल में सलाह हो गई बोले कर ले तुमसे बात करे से तुम मुर्का थी जो और हमसे बात करे

0: काट लेते हैं। बोले ठीक है। सुबह गए सो राजन की बगल में एक ही बोले बैठो एक ही बोले बैठो। अब उन्होंने हटो एक बीजक राजा गिलन गिलन कि अगर जो बीजक जी लोग पहुंच गए हम उस लड़की की शादी उसी के साथ कर लेंगे। सुबह भी हटी तो अब उन्होंने हटी तो जब सलाह हो गई बस सका से काम लगाओ। अब रानी ने डेरा जाओ डेरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलंद ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ। बोली कर ले नहीं ये राजा गिलंद को बाग कटे चल जी और जो मकान गिले चल जी। सुबीर ने की तो ठीक है सुबीर जो बन जो काम लगो सुबीर अपने मजूरी खूने की जावे जावे। सुबह रानी जो बबीर की अति से छाजे पे वो दातन कर रही थी बीजक लाई थी बीजक वही लूटा कर रखती दातन वो लूटा में लिखवा तो सुबह बीजक खो गई जो बादशाह ने बाँच ले बीजन बाँच ले बादशाह ने बीजन ने बाँच बोली कर ले ठीक है बोली कर ले कहीं तुम तसला पटकट पटकट ऊँचे सार पांच एक ही पड़ रही और तुमने पहचान नहीं करी कछु तुम नर तुम सानो हम झंडारा सुबह गए डारा सो आराम से गए डाल भी के लाने तनक तसला में से गिलाव पहुँच गया वो इमेज दाव वो बेटी में दवा में जो राजा गिलंद की लड़की तो उन्हें अति सो अब तो खिलाड़ी हटे तो उन्हें वो लूटा दाव वो लूटा उनमें दाव सुबह ने अच्छा चला निगंध की बल्ला क्या सुन बल्ले लूटा हो गई बाग में पहुंच सुबह सुनने फिर भेजो चढ़ गया पकड़ लिया सुबह जब ये गए पकड़ा सुबह देख दाग के कर ले ये कौन मजबूरी है ये तो कोई राजा है तो क्यों इसे बोलत कहते हैं। बोली कर ला महाराज तो नहीं है मंजूर संजू तो जो राजा पाई बोली कर ला जा पड़े बोली पकड़ लिया बोली कर ला आ रहा है चलो अब बिने मिल गई थी वो बीजक वो बीजक उनने वहाँ चला तो पूरो कर ये का दो मिल रही दो मिल रही नहीं तो भी हटे से लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो वहाँ हट गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करेगा तुम काट ले सुबह राजा काउ समाप्त न कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगिया एक दिन आ तो बोले खिच्ची आके पहुंचेगा सो राजा ने कही बोले कर ले कही साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कर ले के दीखी तुमने फिर वह लड़की की शादी करी उन उनकी रानी ने हती बात से हो गई।
1: देखो दोस्तों जा तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तक नहीं फिर हुई है मुलाकात है कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

0: एक बहुत ही नौनसो कार्यक्रम लेके आए हैं जी को भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने। और यही क्रम में राम गोपाल दादा है अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: भैया अबे सुनो अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कहाँ के लिए विवाह हो दादा?
2: क्या नाम है? पूर्व पटो ग्राम सेना जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे थे?
2: ये हल्को हल्को काम कर अपने दो बच्चे देखे हैं।
1: और
2: वर्कर हम का बस किए काम वाम हम कर तुमने।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का के विचार को जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता दादा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिक्कतें आने लगा और का परेशानी दिक्कतें आती है अपन का?
2: बुढ़ापे में तो देखो ना खाना मुड़ा एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे पिराट हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहे थे हमें ले आया तो हम खा रहे
1: अपने मुड़ी मुड़ा अपने पास बैठ भी जाओ।
2: हाँ बैठ जाओ नहीं आओ थे तुम
1: साथ हैं। अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: हैं। और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
2: सेवा खुशामत सब करा थे जी वैसे अब वैसे ही है मतलब जो लोग ठीक नहीं है कहते हैं चला फ्री करने लगे तना
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: रात में झेल सका था तो बैठ वो है सीधी बात है पैसा से खर्च तो ठीक ही है। अरे कछु नहीं है कछु नहीं तो 10-15 रोज को तो खर्च है ही आदमी को वहाँ मान के चलो कछु ना कछु 10 उठा के चल जाते।
1: दिन भर आपको कैसे कटा था?
2: मेरा दो बच्चे उनका दिमाग लगा दे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी? हाँ जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: मैंने दिक्कतें आदमी का
2: दिक्कत तो देखे कि नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांच पा रहे हम मतलब और उसी ही दिखा लेकिन तगड़ा नहीं बांच पाऊ मेरे दिखा सगड़े।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो? खावे पीवे की आपकी का है?
2: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं आ रही मतलब जो घर में है तो खा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
2: पहले इज्जत रहती समय नहीं था इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी पापा ही जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे को मिल जाए दूसरे की जठानी ना मिल रहे देवरानी ना मिल रहे ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
2: जब जो हो चाहिए कि शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम रहे तो उसे कबू आपत्ति नहीं आए प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति न आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
2: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदार हो काम प्रेम में ओवर का जो काम नहीं कर प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना हो जाए पैसा टका खर्च ना हो
2: जाए घरे पैसा रहे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा वो काम।
1: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आप सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहे चाची आपका कंचाओ सब जनन से आपको का के वो है?
2: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे कि बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात तो, बड़ी बात तो, मतलब शुरू से आप
2: तीर्थ यात्रा ना कछु।
1: हाँ यही बात है आप यही बात पूछना चाहो शुरू से बता दो आप के आप का के वो चाहते
2: जो अपने

0: तारीख हम माने वो तो भगवान उनको माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं के रूप है जो बाप माता को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो तुम मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे।
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हमारे अब पैसे नहीं है तो जाकर है।

0: तीन चार सौ का महीना मेहनत दिए तो अपने उनमें खाद चलाते हैं।
1: ठीक है दादा, जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखो भैया, अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते, कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे राखबे, चारों धाम करे। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हती सो सब जन ने सुनी ही है, लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताए, तो अपन और सुनत है एक गीत खो। और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने, और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ, यानी गौ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो और सभी पंच।

और सुनत हैं एक गीत को, जीखो गाड़े हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

भैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का केर है। ई कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं के हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसे ही हम हर रविवार को लेके आउ थे कार्यक्रम को सुनो जी का केर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को, तो नमस्कार।

जी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काकेरे।

0: साथियों हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार सो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया को बोल रहे
2: हैं? दीनदयाल बोल रहे हैं सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया कैसे हैं?
2: ठीक है सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़न पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: हाँ जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
2: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए हुए वाले के पाए और सब बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है।

0: अभी सुने हो? आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
1: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
0: हाँ।
1: चलो ठीक है, अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
0: तो एक गीत कोई गाओ सुनवा दीजिए थोड़ा।
1: अच्छा, चलो
0: बोल तो हाँ बोल याद नहीं आ रहा है।
1: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए।
0: ठीक है भैया, जय राम जी की।
1: जय श्री राम, जय श्री राम।

शंकर की परात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक बार को रान

से घर पे हरी आए, शिव धाम से घर पे जब आए, तो लगे खिसकने सर्प गरुड़ की आंख।

धागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सच जाने से पुरारे अपनी हवा हवाई में।

कहना है कि मांग लाल है बिंदिया फाल है कंगना कलाई में और चंद छबी

0: अंदर का नंबर दसवा में चाहता है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी कुंडली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: मैं सर वो सुनवा दीजिए कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
1: जुगियाव से सतीश साहू जी?
0: जी हाँ सर।
1: बिल्कुल सतीश भैया आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
0: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
0: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
0: ओके सर,
1: नमस्कार भैया जी।
0: नमस्ते।

0: सचिन भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुनवा दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवाएंगे।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147726।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

साथियों अभी कार्यक्रम मेरी मंडली मेरे बीच से अपने दोस्त माता दिन खुद जाने की अनुमति साथियों अपने तपने फिर हुई है मुलाकात डेरा पे कार्यक्रम में जब तक के लाने नमस्ते।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

घन घोर घटा छाई सावन की तीज आई घन घोर घटा छाई।

जन की सुन अर्ज रसिक जन की सुन अर्ज रसिक जन की करो चरण बंदनी सुन अर्ज रसिक बन की

कबूल करते है भोरा बसत मेघ नचत है मोरा।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं। ये मेरा अपने रेडियो साथी माते दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपन सुने आज फरमाइशन को। हेलो हेलो

0: हेलो।
1: भाई आपकी आवाज नहीं आ रही रेडियो पर।
0: नहीं आ रही?
1: नहीं,
0: अब आ रही हुई है, देखो। हाँ
1: रेडियो अभी लोकगीत चल रहा था तो आवाज आ रही थी, और लोकगीत खत्म हुआ और ये आवाज ना आनी बंद हो गई। अब
0: अच्छा,
1: मेरा फोन भी लग गया, जैसे फोन लगा वैसे ही आवाज बंद हो गई रेडियो पे। नहीं
0: अब देखो अब आ रही क्या?
1: आ रही है, मेरा चालू था मेरा। हेलो
0: यार
1: हेलो, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही रेडियो पर।
0: आ
1: अभी अभी आना शुरू हो गया है।
0: रही,
1: नहीं
0: आने आने लग गया।
1: जी,
0: आ रही है,
1: रेडियो
0: देखो। चलो ठीक है, तो
1: अभी चल
0: कहाँ से
1: रहा
0: बोल
1: था
0: रहे हैं
1: तो
0: आप?
1: आवाज आ रही थी जी। अभी अभी आने आने लगी आवाज
0: जी
1: आपकी
0: जी
1: जी
0: वो थोड़ा क्या है कि नेटवर्क के इशू है।
1: जी
0: हाँ तो बताइए अपना नाम।
1: आर्य माता दिन भैया, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। भैया जी आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है।
1: जी, बुंदेलखंड में जब फोन लगता है
0: जी
1: आप लोगों से वार्तालाप होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है। मथुरा वृंदावन में हल्की हल्की धूप है, मंद मंद शीतल पवन प्रवाहित हो रही है और मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना है
0: क्या बात है, सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं आप?
1: जी। निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त मौसम, और भगवान कृष्ण की जो जन्मोत्सव है उसकी भी तैयारियां चल रही
0: अरे
1: हैं
0: वाह, क्या बात है।
1: जी।
0: आपके यहाँ कोई प्रसिद्ध मंदिर?
1: प्रसिद्ध तो यहाँ तो मंदिरों का शहर है, बहुत सारे मंदिर प्रसिद्ध हैं,
0: जी
1: जैसे बांके बिहारी का मंदिर है, द्वारिकाधीश है,
0: जी
1: जन्मभूमि है आपका, राधा मोहन मंदिर है, राधा रमन मंदिर है, बलदाऊ जी का है, रेती रमन जी का है, राधा रानी का बरकाना में मंदिर है। अनेकों मंदिर यहाँ पर हैं जो कि बस देखते जाइए और उनको दिव्य अवलोकन करके हर्षित होते जाइए, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर
1: देश विदेश के लाखों
0: जी
1: लाख पर्यटक श्रद्धालु सब आते ही रहते हैं, दैनिक रूप से आते रहते हैं। कोई
0: जी तो आज हम कौन सा
1: गोकुल
0: गीत
1: जाना पसंद
0: सुनेंगे?
1: कर जी,
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा झुमका, ये गीत सुना दीजिए
0: अच्छा,
1: आप जी। वो उदित नारायण साहब के साथ में श्रेया घोषाल जी ने गीत को गाया है।
0: चलो ठीक है। और क्या हो रहा अपना?
1: और तो बढ़िया है भैया, बस रेडियो बुंदेलखंड सुन रहे थे और लोकगीतों का कार्यक्रम जो चलता है 12 बजे तक उसको सुन रहा था,
0: चलो बहुत बढ़िया है।
1: और आप अभी फोन लग गया, आपसे वार्तालाप हो रही है
0: चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही लगा ले मुकरे फोन है।
1: जी। बस धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सर
0: बिल्कुल
1: नमस्कार।
0: बिल्कुल।

0: हेलो
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े।
0: जी। योगेश जी कैसे हैं
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: जी? बताइए और क्या चल रहा अपना?
1: सब ठीक है भैया। अभी तो सब त्योहार वगैरह मना रहे हैं।
0: अच्छा
1: राजा
0: चलो ठीक है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे अपन?
1: हिंदुस्तानी से सुनवा देंगे, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
0: अच्छा
1: जी
0: कछु कारण है का?
1: नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, बाकी कभी कभी सब सभी
0: अच्छा
1: समय के गाने सुनते हैं। जी
0: चलो बढ़िया है। और सब मजे में?
1: हाँ, ना सब ठीक है भैया।
0: चलो ठीक है। तो अपन गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: जी जी
0: और कुछ?
1: नहीं, आप लोगों से बात करके काफी अच्छा लगता है।
0: चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से?
0: सर जी गुजरात से बोल रहे हैं।
1: कहाँ से?
0: गुजरात से। हाँ
1: गुजरात से।
0: सर जी, राजकुमार
1: गुजरात से कौन बोल रहे भैया?
0: सर जी। हाँ सर
1: राजकुमार जी।
0: जी,
1: जी कैसे हैं राजकुमार जी?
0: बस बढ़िया है सर जी। और आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल मस्त, बढ़िया।
0: बहुत अच्छा सर जी।
1: आज कौन सा गीत सुनेंगे राजकुमार जी आप?
0: सुना दीजिए, सबसे बड़ा खिलाड़ी का कोई भी गीत। सबसे बड़ा खिलाड़ी इसका कोई भी गीत।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्या
1: और कहा हो रहा,
0: हो रहा है सर जी? काम हो रहा है। काम
1: क्या काम चल रहा?
0: यहाँ चल सर जी, एक कपड़े का काम चलता है। हाँ
1: अच्छा, कपड़े का काम चलता है।
0: सर जी,
1: चलो बढ़िया है, तो अच्छा चल रहा काम अभी।
0: काम तो यहाँ अच्छा ही चलता है सर जी। ये
1: हाँ
0: गुजरात है ना, यहाँ का कपड़े का ही काम तो होता है।
1: अच्छा, ज्यादातर काम कपड़े का होता है गुजरात में।
0: हाँ,
1: चलो
0: ये
1: बढ़िया
0: जो
1: है
0: जो साड़ियाँ होती हैं, ये
1: जी।
0: चलता है। हाँ
1: अच्छा, तो अच्छी बात है।
0: हाँ सर। अरे आप तो देखते होंगे खुद ही, आपके शहर में साड़ियाँ जाती हैं। कोई एक देश का नहीं रहता है, कई देशों का रहता है उसमें।
1: अच्छा,
0: अरे जैसे गुजरात की हो गई, बनारस की हो गई, कानपुर की हो गई, मतलब शहर में जो जैसा व्यवसाय है वैसा हिसाब से जाता है। अब
1: ऐसा। चलो ठीक है।
0: सर जी, आपकी तरफ वो पानी का क्या हाल है? चलो
1: पानी तो अभी खुल गया।
0: अच्छा है, खुल गया सर जी। लेकिन बाढ़ तो उधर, आपके उधर कुछ आया था?
1: नहीं, यहाँ बाढ़ें नहीं आती ज्यादातर। यहाँ पर तो जो नदियाँ होती हैं वो ही उफान पर रहती हैं।
0: अरे तो आपकी बेतवा नदी है? हाँ
1: हाँ, बेतवा नदी बिल्कुल ढिक पे है अपन। वो तो जा रही, अच्छी खासी जा रही।
0: हाँ सर जी, इस समय तो हर नदियां अच्छी खासी जा रही हैं।
1: हाँ सही कह रहे हैं आप।
0: और सर जी, वर्षा दीदी का क्या हाल है?
1: बढ़िया है, मस्त हैं। थोड़ी अभी तबीयत डाउन हो गई थी उनकी।
0: अच्छा, तभी।
1: हाँ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था थोड़ा,
0: हाँ, बताओ
1: पर वो आई तो हैं ऑफिस, तो आई हुई।
0: दीदी। तो वो तो सबको बोलती है कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, लेकिन उन्हीं का तबीयत
1: क्या क्या,
0: गड़बड़
1: वो तो होता ही है।
0: गया।
1: चलो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन लगा, आपकी फरमाइश सुनाते हैं अब।
0: ठीक है सर
1: ठीक
0: जी,
1: है, नमस्कार भैया।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार
1: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से?
0: जी। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, जिला विदिशा, एमपी से। बस
1: जी मोहम्मद जी, कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: और मौसम कैसा हो रहा है आपको इधर? अच्छा,
1: मौसम, आप धूप निकल रही थोड़ी थोड़ी,
0: बादल नहीं हो रहे हैं?
1: बादल भी छाए हो, मेरी धूप हो जाती है, मेरी बादल आ जाते हैं।
0: बस ऐसे मौसम बेहतर ही है।
1: ऐसे मौसम आपके यहाँ है?
0: हाँ सही है, बादल मौसम, धूप निकल रही है, हल्की फुल्की बादल भी छाए हैं।
1: हाँ, चलो बढ़िया है। और गीत कौन सा सुनेंगे आप?
0: फिल्म का नाम है मैं अनारी तू खिलाड़ी।

0: गाने के बोले हैं जुबा खामोश होती है कुमाशान मलका याग्नि की आवाज में। मिल गया फिल्म?
1: जुबा खामोश होती है।
0: जी जी जी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। दूसरी फिल्म बताऊं को? दूसरी फिल्म बताऊं?
1: नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं
0: जी।
1: चलो ठीक है। और सब बढ़िया मजे में?
0: हाँ सब मजे में है, सब मंगल में है।
1: चलो मंगलमय रहना चाहिए
0: जी। आप और आलो आकाशवाणी के लोग सब सब ठीक ठाक हैं?
1: सब ठीक ठाक हैं
0: जी जी।
1: ठीक है अपन गीत की ओर चलते हैं।
0: जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से?
1: मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ जी।
0: मुरैना से हरबिलास तोमर जी।
1: जी सर
0: अरे,
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी, आपने फोन लगाओ उस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: और
1: आपको।
0: कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे आपकी दुआ थी ईश्वर कृपा थी।
0: बिल्कुल, सब ईश्वर की कृपा होनी चाहिए।
1: फिल्म
0: चलो, अच्छी बात है। बताइए तो, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: का नाम है जब याद किसी की आती है, तेरे
0: जी,
1: बिन सावन कैसे बीता तू क्या जाने वाल में।
0: अच्छा,
1: जी जी
0: बिल्कुल सही है।
1: बस
0: और काहूर अपनो
1: खेती किसानी में गृहपाठ काम निराई गुड़ाई कर रहे थे सुबह सुबह, अब तो नहीं कर रहे इस
0: ना।
1: समय। सब्जियों की खेत में बो दिए गृह बाट काम थोड़ी।
0: अच्छा, गृहवाट का लगाए आप?
1: बिल्कुल उसमें
0: अरे,
1: सब्जियां बोल
0: क्या
1: दूं। ====││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: लौकी है, तुरई है, उड़दा है, सेम है, भिंडी है, सब तरह की सब्जी लगाऊंगी।
1: चलो बढ़िया, ऐसा ही बात है, थोड़ी थोड़ी सब चीज होते रहे।
0: हाँ थोड़ी थोड़ी सभी हो जाती है।
1: नहीं अच्छा है, ये तो अच्छा किया आपने। चलो ठीक है, तो गीत की ओर चलें क्या, और कुछ कहने?
0: बस गीत की ओर चल रही, सुना
1: चलो
0: दी।
1: ठीक है,
0: ओके
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से?
1: जी मैं यूपी बुंदेलखंड झांसी ग्राम अठानना से प्रीतम सिंह यादव बात कर रहे सर।
0: हंदना से प्रीतम जी। जी
1: जी
0: प्रीतम भैया, कैसे हैं?
1: ये सर बढ़िया
0: बहुत अच्छी
1: है।
0: बात
1: दो
0: है।
1: तो 3 दिन से मौसम खुल गया
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: है। फिर से है, अब 3 या 4 तारीख को दो को बहुत तेज पानी दे रहा है फिर से।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: और आज गीत कौन सा सुनेंगे अपन?
1: गीत है, इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। हाँ
0: अच्छा, बिल्कुल। और कहा हो अपनो?
1: कुछ नहीं सर, घर ही पे है।
0: अच्छा, चलें गीत की ओर।
1: जी सर
0: नमस्कार भैया।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हते ही बिना अपने रेडियो साथी माते दिन भैया के संग में। और दोस्तों, अपन सुन रहे थे जो कार्यक्रम हेलो फरमाइश कार्यक्रम को अब इतना ही संपन्न हुए को समय हो गया है। सो अपने दोस्त माते दिन भैया को तो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति, और चलत आप सुनो इन प्यार प्यारे से हिंदी गीतन को, लोक गीतन को आनंद। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन खोजे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, तो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपों ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। तो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।

जी हाँ श्रोताओं, इस मल्हार में जब कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव को जेल के अंदर डाल देता है हथकड़ी और बेड़ी लगाकर, तो आठवें बच्चे के रूप में कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। तो कवि ने क्या लिखा है, आइए सुनाते हैं।

रसिया तब है ये बादल बरसे।

0: व्यवसाय संभव है,
1: सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
0: जी, या प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है, वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया गया है
0: जी।
1: तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है
0: जी। अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजना संचालित की जा रही है?
1: जी वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजना संचालित की जा रही है रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है
0: जी।
1: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
0: जी,
1: युवा उद्यमी योजना
0: जी,
1: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है
0: जी।
1: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो इसमें 50,000 से लेकर 10,00,000 तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है
0: जी जी जी।
1: जबकि युवा उद्यमी की

0: बात की जाए तो ये 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है। इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण दिया जा सकता है,
1: जी जी
0: व्यवसाय शामिल नहीं है
1: जी।
0: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है। इसमें सेवा, व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, केंद्र सरकार की सर कौन सी योजना है?
0: केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
1: सृजन कार्यक्रम,
0: यह योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कई स्थापना की जा सकती है। इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
1: चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसलिए धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बात है। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश ढाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए। ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा, कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना, योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होने चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको, यदि आप उद्यम डालते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है, और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने आती है। तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, सब तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए। खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम बिमल जी के पास ले चलते हैं। और बिमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हरप्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।
1: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे, जिससे कि हम करते हैं। तो उसका ये कि है कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
0: जी जी।
1: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगा जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है।
0: जी।
1: अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, तो ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
1: धन्यवाद।
0: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों, अभी आपने विमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उपनिरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पल्ले पर अगर रचनात्मकता और विचार खोज और नवीनीकरण देखते हैं तो दूसरे पल्ले पर आर्थिक

बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। दोस्तों, हमारा नंबर है 9219207749। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड है 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए हम तमाम प्रकार की रोजगार सूचनाएं हो या उनकी करियर संबंधी जानकारी हो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोता साथियों तक पहुंचाते रहते हैं। आज चूंकि आज एक बहुत बड़ा विशेष दिन है और आज के हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, चूंकि हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी में यथासंभव स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को महत्व देता है, मरीज और फिटनेस के शौकीन आमतौर पर चोट, बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारण होने वाली गति संबंधी विकारों से जुड़ी शारीरिक अक्षमताओं के लिए फिजियोथेरेपी सेवाओं की तलाश करते हैं, जो उनके लिए जरूरी या महत्वपूर्ण किसी भी गतिविधि को करने या करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। स्वास्थ्य सेवा द्वारा अपनाई जाने वाली अनेक प्रतिक्रियाओं में से चिकित्सीय व्यायाम एक प्रमुख तत्व के रूप में अपना स्थान रखता है, जो किसी व्यक्ति के कार्य को सुधारने या बहाल करने या शिथिलता को रोकने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को केंद्र में होता है, जैसे कि संतुलन में सुधार, समन्वय विकसित करना, प्रगतिशील लचीलापन, गतिशीलता में सुधार, मांसपेशियों का प्रदर्शन और तमाम प्रकार की। चूंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, वो डॉक्टर ही बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें मिल गए हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी। आज आप किसी परिचय के मोहताज, नाम आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, हमारे मित्र हैं मनोज द्विवेदी जी। आप चिरंजीव हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे मरीजों को उन्होंने सही भी किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी रहते हैं। तो खास बातचीत में आप सुनिएगा कितनी महत्वपूर्ण रहता है ये फिजियोथेरेपी हमारे स्वास्थ्य के लिए। चलिए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं।

0: सबसे पहले मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को। मुझे बड़ी खुशी है रेडियो बुंदेलखंड के मंच पर आने पर, और चूंकि ये चैनल मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता और जानकारी भी प्रदान करता है, तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि चूंकि विश्व थेरेपी दिवस, चूंकि एक अलग लोगों को समझ में भी नहीं आता, खासतौर पर अगर ग्रामीण परिवेश में अगर देखा

0: जोड़ा जाए इसको, तो इसकी शुरुआत इतिहास किस तरीके का रहा है, थोड़ा हमारे साथ बताइएगा।
1: देखिए, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप से शुरू हुई
0: जी।
1: और जैसे कि वर्ल्ड वार टू, और इस दौरान बहुत सारी कैजुअलिटी और बहुत सारी इंजरीज हुई, तो उस दौरान विकलांगता या जो इंजरीज के दौरान चलने उठने बैठने में असमर्थता आई, तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल या भूमिका अहम होती चली गई, वहां से ये विकसित होता चला गया। दूसरी बात कि भारत में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इसका समावेश होता चला गया और आज ये किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अहम भूमिका प्रदान कर रही है
0: जी। मतलब जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि जो फिजियोथेरेपी, और खासतौर पर आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आप इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके की मरीज यहाँ को देखने को मिला है आपको, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, और खासतौर पर ये इलाज किस तरीके से लोगों को एक रामबाण साबित होता दिखाई दे रहा है।
1: देखिए, मैं करीब करीब बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 साल से फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रहा हूं। खासकर अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई बहन अपने खेतों में काम करते समय या अपने गांव देहात में मजदूरी करते समय बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। जैसे खेतों में काम करते समय कमर की तकलीफ होना, या लंबे समय तक झुके रहने की वजह से गर्दन में समस्या होना, या बुवाई के समय खासकर जो है किसान भाई जो है हमारे, तो उनको घुटनों में दर्द होना, तो इस तरह की समस्याएं लेकर जब हमारे पास आते हैं, तो उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनका फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है।
0: सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे हमारे साथी, फिजियोथेरेपी और नॉर्मल जो इलाज कराते हैं, क्या अंतर दिखाई देता है और क्या लोगों को समस्याएं आती हैं?
1: देखिए, आज के समय में बहुत सारे जो हमारे जागरूक भाई बहन हैं, तो उनका ये मानना रहता है कि अगर बिना दवाई या बिना जो है ऑपरेशन के क्या कोई ऐसी पद्धति या चिकित्सा विधि है जिसके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी परेशानियां, जैसे कि मांसपेशियों का दर्द हो गया, या जोड़ों का दर्द हो गया, या नसों का दर्द हो गया, या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि लकवा हो जाना या किसी अंग का काम नहीं करना, तो ऐसी समस्याओं में भी हम एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या व्यायाम या कुछ मशीनों के योगदान या सिकाई से भी उसमें लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये पद्धति चिकित्सा क्षेत्र की ही है, तो कई बार बीमारियों में मेडिसिन के साथ साथ या दवाइयों के साथ साथ भी फिजियोथेरेपी का योगदान रहता है
0: जी। खास तौर पर सर देखा जाता है, अगर ग्रामीण अंचल की बात करें, तो देखा जाता है कि लोग अगर कुछ भी समस्या आती है, खासतौर पर अगर उनको पैरों में दर्द हुआ या फिर चेस्ट पेन हुआ, इस तरीके का कोई भी समस्या आती है, पेन किलर जो रहती है, दर्द निवारक गोलियां जो रहती हैं, खासतौर पर वो खा के उसका निदान कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, इससे लोगों के शरीर में जो नुकसान दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर आज जो विकट समस्याएं सुनने को और देखने को मिल रही है, कैंसर जैसी समस्याएं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयां और रोज रोज दवाइयां खाने से हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान होता है, क्या कहना चाहेंगे
1: मनीष जी? ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल उठाया है, और इसका मुझे लगता है कि हमारे हर भाई बहन को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, हर छोटी समस्या के लिए तुरंत पेन किलर ले लेना या दर्द निवारक दवाई का सेवन करना उचित नहीं है, जब तक कि वो बहुत ज्यादा विकट समस्या का रूप ना ले ले। मैं कहूंगा कि छोटे या छोटे मोटे शारीरिक कष्ट के लिए आपको दर्द निवारक दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो आपको डॉक्टर की उचित सलाह के बाद लेना चाहिए। रही बात छोटे दर्द वगैरह के लिए या छोटी मोटी दिनचर्या में जो आप कष्ट लेते हैं उसके लिए, तो उसके लिए छोटे मोटे व्यायाम, अपनी दिनचर्या में बदलाव और सही पोषण के माध्यम से आप उसको ठीक किया जा सकता है
0: जी। लेकिन यहाँ पर तो समस्या यही आती है कि लोगों को, चूंकि ऐसा माना जाता है, चूंकि मैं जाना स्पेशलिस्ट नहीं हूं उस चीज में, लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी

0: से और जो हम लोग नॉर्मल दवाइयां लेते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, फिजियोथेरेपी कराने में थोड़ा समय लगता है, जो कष्ट रहता है उनको जो दर्द रहता है वो फिजियोथेरेपी से क्या धीरे धीरे जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। आपका क्या मानना है कि ये क्या चीज बताता है?
1: देखिए, मैं कहूंगा कि फिजियोथेरेपी भी लाभ देती है और दवाइयां या और जो पद्धति है वो भी लाभ देती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि जैसे आर्थराइटिस है या गठिया हम कहते हैं, तो गठिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सूजन बढ़ रही है या किसी जोड़ के बीच में इन्फ्लामेशन या संक्रमण फैल रहा है, तो उसमें योगदान रहेगा मेडिसिन का या दवाइयों का जो उस संक्रमण को रोकने का काम करेगी। लेकिन अगर उस जोड़ में संक्रमण के साथ साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो रही हैं या स्नायु टाइट जकड़ रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का योगदान लिया सकता है और उस संक्रमण को कम करने के लिए दवाइयों का योगदान लिया सकता है। तो दोनों का ही सम्मिलित रूप मरीज को और बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है।
0: ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ देर बाद आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा, ऐसा लोग कहते हैं, आपका क्या
1: ये
0: मानना?
1: बिल्कुल सही कहना है मनीष जी आपका।
0: जी
1: है क्या कि फिजियोथेरेपी जब हम प्रारंभ करते हैं किसी समस्या को लेकर के, तो हमें उन मांसपेशियों को या उस जोड़ को पूरी तरह से ठीक करने में या सामान्य लाने में एक समय लगता है। हो सकता है कि यह समय कुछ दिनों से लेकर के महीनों तक में लग जाए, क्योंकि जितनी पुरानी समस्या होगी उसको ठीक होने में भी उतना समय लगेगा,
0: जी
1: जितनी गंभीर समस्या होगी उसके उपचार में भी उतना ज्यादा समय लगेगा। तो
0: जी
1: हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी थोड़ा सा टाइम ले सकती है पूरी तरह से ठीक होने में।
0: एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर पर जब हम समुदाय के पास जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या देखने को और सुनने को मिल रही है कि खासतौर पर महिलाओं और पुरुषों के घुटनों में ये दर्द होता है। क्या मानना है, किस कारण से होता है? क्या खान पीन से होता है, खान पान से होता है, क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे होता है? क्या लगता है किस तरीके से आजकल ये जो समस्याएं देखने को मिलती और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती चली जा रही हैं, इस इलाज इसको फिजियोथेरेपी में किस तरीके से कर सकते हैं?
1: मनीष जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि हम युवा अवस्था में हैं,
0: जी
1: तो उस दौरान बहुत सारे जो है खेल कूद के दौरान या हमारे कुछ क्रियाकलाप के दौरान चोटें लग जाती हैं।
0: जी
1: उन चोटों की वजह से हो सकता है उस युवा अवस्था में, चूंकि हम अभी यंग हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं, हमारे जोड़ मजबूत हैं, तो ये समस्याएं हो सकता है उस समय या उस अवस्था में कम महसूस हो। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो जो पुरानी चोटें हैं ये उभर के आने लगती हैं या हमारे जोड़ को बहुत जल्दी जो है संक्रमित करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अगर हमारा खान पीन अच्छा नहीं है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो बहुत हमारी फिजिकल एक्टिविटी या हमारे शारीरिक व्यायाम से संबंधित कह लीजिए वो कम है, तो हमारी मांसपेशियां कम जो रहेंगे जो उम्र के साथ हमारे जोड़ों को प्रभावित करेंगे। दूसरा, अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गठिया हो गया, डायबिटीज हो गया या और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो भी इन जोड़ों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। अगला कारण ये हो गया कि अगर हमारी जलवायु में, खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि अब बहुत ज्यादा क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है या सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, तो वह भी हमारे जोड़ों को प्रभावित करती हैं जिनसे ये समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं।
0: इसका निदान किस तरीके, क्योंकि फिजियोथेरेपी आप काफी सालों से इस पर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल की हैं और खासतौर पर आपने एक फोकस तरीके से इसको चीज को बिल्कुल बारीकी से लिया है। ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल के लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं खासतौर पर इस फिजियोथेरेपी को लेकर?
1: देखिए, अगर आपको कुछ भी मांसपेशी संबंधित या जोड़ों से संबंधित समस्या होती है, तो हमारा ये मानना रहता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है उस तकलीफ में, फिर हम काम में लग जाते हैं। तो मैं कहूंगा ये पद्धति ना अपनाएं। अगर आपको समस्या लंबे समय से है या वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो मैं कहूंगा कि अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें और उनका मार्गदर्शन लेकर के उन चीजों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, जिससे आप समस्या से बच सकते हैं और समस्या से निदान भी पा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, बहुत

0: यह बात की है। और साथियों हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है, और खास तौर पर यह आज हम जो बीमारियां सुनने की और देखने को मिल रही हैं, बहुत चिंताजनक बात है। हमें इसको समझना होगा, खास तौर पर ग्रामीण अंचल में इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है कि हमें कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी के और रुख करना होगा, और यही इलाज है। क्योंकि आजकल ये जो बीमारियां सुनने को मिल रही हैं, उसका सिर्फ एक ही इलाज है। किस तरीके से हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इसका निदान पा सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अगले चरण में फिर से मिलेंगे, अगले भाग में जरूर मिलेंगे। कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं, इस पर हम जरूर बात करेंगे। बने रहिए आपके दोस्त मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 FM।
1: नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और ये विशेष कार्यक्रम है आज, चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, बड़े धूमधाम से, चूंकि डॉक्टरी लाइन में से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अपना एक महत्व भी रहता है। और खास बातचीत हमारे डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी से आपने सुनी है, कितनी महत्वपूर्ण रहती है। और मतलब ये कहेंगे कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर तमाम प्रकार के एक्सरसाइज के माध्यम से और बहुत सारी आधुनिक मशीनों द्वारा यहाँ पर तमाम प्रकार के लोगों को, मांसपेशियों में जिनको खिंचाव है या पर किसी को लकवा मार गया है, तो एक एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरीके से वो लोगों को राहत दे रहे हैं, बड़ा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी को, जिन्होंने ये प्रयास किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक वरदान साबित हो रहा है चिरंजीव स्पोर्ट इंजरी सेंटर, जो कि हॉस्पिटल में है। डॉक्टर मनोज द्विवेदी, तो खास बातचीत आपने सुनी है, और भी हम तमाम प्रकार की बातचीत हम लेकर आएंगे। तो कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92 19 20 77 49, या फिर हमारे इस पते पर आप चिट्ठियां भी लिख सकते हैं, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। और आपके रेडियो साथी मरीज लेते हैं जाने की इजाजत, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और

अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार। इस कार्यक्रम को साथियों हम बहुत दिन से चले आ रहे हैंगे और कोशिश कर रहे हैंगे कि हमारे श्रोता साथी सबसे पहले जब ग्राम विकास की बात आतेगी तो ग्राम विकास में सबसे ज्यादा सरपंचन को अहम भूमिका रहतेगी, आपको भी पता है और सब साथियों को हमारे पतो भी है। और तो और साथियों अभी से अपन को ग्राम पंचायत जब से गठित हो गई हैगी अपन को का करने हैंगे सरपंचन के संगे मिलके अपने ग्राम विकास को खाका तैयार करने हैगो, संगे संगे जो नियमावली हैगी बा नियमावली के अनुसार अपन को काम करने हैं। सबसे पहले एजेंडा तैयार करने कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन से ऐसे काम रह गए हैंगे जो पंचायत करा देंगे और जिनकी मूलभूत आवश्यकता हैगी। तो सबसे पहले अपन हो जैसे बरसात को मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में सबसे पहले जब बैठक हुई हैगी तो बैठक में अहम चर्चा अपन हो का करने हैं गो के सबसे पहले अपन हो एजेंडा तैयार करने खेती किसानी को कि खेती किसानी में हमारे किसान साथी कैसे काम कर सकते हैं, पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैंगे, बरसात के पानी को कैसे रोक सकते हैंगे, मेड़ बंधन कौन तरीके से करा सकते हैंगे, तालाब गहरीकरण कौन तरीके से हो सकते है गो, संगे संगे अपने पेयजल की का व्यवस्था है, सड़क की का व्यवस्था हैगी, शिक्षा की का व्यवस्था हैगी, रोजगार में जब अपन रोजगार की बात करते हैंगे तो ग्राम पंचायत में मनरेगा में बहुत सारा काम आते है गो तो बाकी का व्यवस्था है। तो ये सारे चीजें अपन को लिख के वैसे तैयार करके रखने आगामी ग्राम सभा जब भी हुई है तभी अपन को जे एजेंडा जो आपने तैयार करो, ये रूपरेखा आपने जो तैयार करी ग्राम पंचायत में लेके जाने हैंगे और सरपंचन के संगे जो बैठक होत हैगी ग्राम सभा की बैठकें होत हैंगी उनको जाके अपन को बताने हैं कि जे जे मूलभूत आवश्यकता है आप अपन को ग्राम विकास पे अपन को काम करबे की बहुत ज्यादा आवश्यकता हैगी। तो ये मूलभूत चीजें हैं जो अपन

सोचने हैं, समझने हैं। दूसरी बात आतेगी कि स्वयं सहायता समूह हर ग्राम पंचायत में बन रहेंगे। तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की काब भूमिका रत है ग्राम पंचायतों में। बा विषय पर आज अपन बतकाव कर बे बारे हैंगे। छोटी छोटी बातें अपन ध्यान में रखे हैं कि कैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता रत है, खासतौर पर स्वयं सहायता समूह जो काम करत हैंगे, मिलके जब काम करत हैंगे तो बहुत अच्छा लगत है, आनंदित होते हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आते हैं। तो वो विषय पर अपन बतकाव करवे जा रहे हैं, लेकिन अपनी बातचीत काफी हो चुकी है तो अपन का ना अपन इतने 900 लोग गीत को सुन लेते हैंगे। और गीत के बाद अपन आज हम जाने कि ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की भूमिका, खासतौर पर ग्राम पंचायतों में भूमिका स्वयं सहायता समूह की, स्वयं सहायता समूह की का भूमिका रत हैगी, जहाँ पे भी एक प्रकाश डाले हैंगे, का पात्रता ग्रामीण युवक और जो गरीब हैंगे उनको का सहयोग मिलना चाहिए, विशेष समूह जो बनाते हैं कैसे बनाते हैंगे, घटक कार मापदंड का रत है, उन विषय पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे पहले अपन सुना थे 900 गीत को, बने रहो आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बात है।

अपना रेडियो अपनी बातें। अभी आप सुन रहे थे उत्तम सिंह यादव और उनके साथियों के आवाज में एक प्यारे से गीत को। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ात भाई अपन जानत हैं कि ग्राम पंचायत में खास तौर पर स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका रहत है। बाबे साहब पर अपन बातचीत कर रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि आजीविका कौशल के सफल क्रियान्वयन में विशेष कर अपने अधिकार के क्षेत्र में अत्यंत निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रहत हैगी। क्योंकि आजीविका कौशल में कौशल विकास के लाने ग्रामीण सैचुरेशन अप्रोच अपनाई गई, जाके लाने कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने, जानकारी प्रदान करने के प्रयासों में मदद करने, कौशल विकास की मांग और नियोजन के लिए डाटाबेस तैयार करने, जॉब मेला के आयोजन में मदद करने तथा क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर पीआरए की सहायता करने में ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाते है। ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि महिलाएं अधिक अत्यंत कमजोर वर्ग कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल हैं, उन्हें संभावित उम्मीदवारों और संभावित उम्मीदवारों के अभिभावकों के साथ एक विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करना होगा और कार्यक्रम की संभावनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। जब पीआईए कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है तब ग्राम पंचायतें विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट प्राप्त करके तथा प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवार के साथ सीधी बातचीत करके क्रियान्वयन पर नजर रख सकती है। ग्राम पंचायतों का क्रियान्वयन संबंधित मुद्दे जिला और राज्य मिशन के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ग्राम पंचायतें प्रशिक्षण के पश्चात उम्मीदवारों के लिए को दिए गए काम पर नजर रख सकती है। काम के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत कर सकती है। शिकायत निवारण के हिस्से के रूप में कार्य कर सकती है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका जो रहती

है वो आजीविका कौशल में कौशल विकास के माध्यम से निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है इसमें, और निर्धनों की संस्थाओं की क्षमताओं का इस्तेमाल करके नियोजन का लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। निर्धनों की संस्था HSG यानी स्वयं सहायता समूह, उनके संघ और तथा आजीविका क्रियाकलाप निर्धनों को स्वयं सहायता पर आधारित सामूहिक क्रियाकलापों तथा पारस्परिक सहयोग के लिए मंच मुहैया कराती है। लक्ष्य में रखे हुए लाभार्थियों को एकजुट करने, कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने, लाभार्थियों को निर्धारण में सहायता करने का, निर्धारित युवकों के अभिभावकों हेतु काउंसलिंग सत्रों का आयोजन में मदद करने, PIA द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी करने आदि सहित विभिन्न क्रियाकलापों में इन संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार PIA को अपनी परियोजना का क्रियान्वयन की कार्य नीति तैयार करने में SSG यानी स्वयं सहायता समूह की भूमिका को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यानी जरूरत है। अब बात आती है पात्रता। ग्रामीण युवक जो गरीब हैं, 18 से 35 वर्ष की आयु के निर्धन ग्रामीण युवक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह हैं। विकलांग व्यक्तियों तथा विशेषकर अपेक्षित जनजाति समूह यानी PTG के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष इसमें रखी गई है। विशेष समूह जिनमें विकलांग व्यक्ति, अवैध व्यापार में पीड़ित व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, पुनर्वास किए गए बंधुआ जो मजदूर है, को 16 वर्ष से अधिक की आयु में भी नामांकन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वे जॉब संबंधित प्रशिक्षण सहित अन्य प्रशिक्षण का कार्य पूरा होने तक 18 वर्ष के हो जाएं। निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण नामक प्रक्रिया के जरिए निर्धनों का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया NRLM कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा PIP के लिए अधिसूचित किए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा। इस संभावना व्यक्त की जाएगी कि PIP से लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्ष्यबद्ध करने में मदद इसमें मिलेगी। जब तक PIP के उपयोग से निर्धनों का निर्धारण किया जाता है, तब तक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह के निर्धारण में BPL परिवारों की मौजूदा सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। उपयुक्त के अलावा ऐसे युवक जो विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मनरेगा कार्यस्थलों पर कम से कम 35 दिनों तक श्रमिक के रूप में कार्य कर चुके हैं, BPL सूची में ना होने के बावजूद इसके लिए पात्र होंगे। ऐसी आशा जताई जाती है आशा जताई गई है कि PIP के दौरान उनका निर्धारण कर लिया जाएगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर विशेष बल, राष्ट्रीय स्तर पर 50% निधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की जाएगी। इनके बीच निधियों के अनुपात का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इसके अलावा 15% निधियां जो अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए अलग से रखी जाएगी। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी अल्पसंख्यक समूहों में से हों। कवर किए गए व्यक्तियों में से 1/3 लाभार्थी महिला होनी चाहिए। यह निर्धारण केवल न्यूनतम है। यद्यपि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों में से किसी भी श्रेणी में कोई पात्र लाभार्थी नहीं है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसे प्रमाणित कर देती है, तब उनके लक्ष्यों को अन्य श्रेणी के लक्ष्यों में बदला जा सकता है। विकलांगों व्यक्तियों के मामले में अलग से परियोजना प्रस्तुत की जाएगी। इस परियोजना के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे। इनकी इकाई लागत इन दिशा निर्देशों में उल्लेखनीय इकाई लागतों में से अलग होगी।

विशेष समूह जो होते हैं उसकी भी एक गाइडलाइन तैयार है। यदि भी विकलांग व्यक्तियों की अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों, किन्नरों, पुनर्वासित किए गए जो बंधुआ मजदूरों जैसे विशेष समूह तथा अन्य कमजोर समूहों के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी राज्यों को ऐसे विशेष समूह जो अक्सर छूट जाते हैं तो ऐसे को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यनीति बनानी पड़ती है। इन समूहों की चुनौतियों से निपटने तथा भागीदारी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य के स्वरूप को राज्यों द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में समाविष्ट किए जाने की जरूरत है। मूक बधिर, चलने में अक्षम, दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में संभावित नियोजकताओं को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें काम पर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों की नियोजन पर जुड़े प्रशिक्षण संबंधित नोट आप नोट कर लीजिए, जहाँ पर वेबसाइट है वहाँ पर उपलब्ध है नोट पूरे http://nrlmskill.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर घटक और मापदंड की बात करें तो आजीविका कौशल क्रियाकलापों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप और दूसरा है PIA द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप। अब आता है SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, उनके लागत मापदंड। इस खंड में SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची, उनके लिए लागत मापदंड के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह राज्य नोडल एजेंसी पर भी लागू होगा जिन्हें राज्य आजीविका कौशल क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है। कौशल में कमी का आकलन, SGA का उद्देश्य कौशल और नियोजन के लिए ग्राम पंचायत बार मांग का पता लगाना, नियोजन हेतु विभिन्न कौशल श्रेणी में प्रतिभावना उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। हालांकि 10 वर्षों में किए जाने वाली जनगणना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कराए गए अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े प्रारंभिक बिंदुओं हो सकते हैं, फिर भी SRLM को खुद या पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत वार विस्तार आंकलन कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप इससे जुड़िएगा और आपको लगता है कि SRLM या NRLM जो मध्य प्रदेश में चलता है उनसे जुड़कर विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। साथियों, हमें आशा है कि इसका दूसरा भाग हम अगले कार्यक्रम में जरूर आपके पास लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। चूंकि हमारे चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं तो ऐसे में कुछ समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। किस तरीके से आपका नया सरपंच किस तरीके से काम करने में सक्षम है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसे इस पर गौर फरमाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जिस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, क्योंकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है उस पर भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती भी हुई है तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहती।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से दो गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70-80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं, तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है,

0: फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौधे तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब या उसकी हाइट जो होती है लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।
1: जी,
0: तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
1: जी। और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
0: जी
1: विधि
0: सर,
1: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
0: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60 बाई 60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60 बाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना
0: जी
1: चाहिए?
0: सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई है ना उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम है MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूप में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूप में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
0: जी सर बिल्कुल, अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर मिर्ची भट्टे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
0: बिल्कुल
1: को?
0: सर, अभी क्या है जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही है, जिसको हम पीथियम पेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है, तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनकोजैब या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: जी, बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें?
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाई भी है, क्या करना चाहिए उनके साथ?

0: साथियों को। जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो
1: जी
0: उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको बायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है। बहुत सारी उसकी वेराइटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वेराइटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वेराइटी की, या काशी लालमा वेरायटी। ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वेरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वेरायटी की अपेक्षा।
1: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है मतलब।
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वेरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो
1: अच्छा,
0: चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

0: विधा बुंदेली
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं, वो विधा को आनंद लेते हैं। यही क्रम में आज विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन मिले भैया प्रकाश कुशवाहा जी से, जो गुंदरई के रहवाए हैं। और उनसे जाने के आपने जो विधाएं कहाँ से सीखी हैं और आपने कहाँ कहाँ गाँव है, ये सब बातें अपन प्रकाश भैया से करें और उनसे जानकारी अपन जानब चाहें। सो यही के संगे संगे अपन प्रकाश भैया जी से मिलवे से पहला एक बढ़िया से गीत को सुनत, गीत को आनंद लेत, और फिर ये गीत के बाद अपन प्रकाश भैया से बात आगे करें। तो कहना अपन प्रकाशी भैया के गाय भय गीत को अपन सुन लेते हैं। सुनत है ये गीत को जी गा रहे हैं प्रकाश भैया जी।

0: बिल्कुल दोस्तों, अभिमान त्याग देना जो तुझ में समाया है। देखो कितना बढ़िया गीत अपन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया प्रकाश चंद कुशवाहा जी। अब आप दोस्तों प्रकाश चंद जी से आगे बात और करते हैं कि आपने कहाँ से सीखी है और कैसे जब विधाएं सीखी हैं। सो आप मिलते हैं प्रकाश भैया जी से। अच्छा प्रकाश भैया, जा बात बताओ कि बात करें अपन गावे बजावे की, तो आपने जो गावो कैसे सीखो?
1: भैया हम तो छोटे रहते जब गाँव में राम सभा होती।
0: अच्छा,
1: महीना भर में कहो एक दिन बैठ जाए।
0: हाँ।
1: कहो महीना भर में दो बार बैठ जाए, और कहो हफ्ता में एक बार बैठ जाए।
0: अच्छा, तो राम सभा में बैठे,
1: राम सभा में जाते।
0: अच्छा, इसके अलावा आपने कहा को गुरु बनाओ तो कैसे?
1: नहीं, हमने गुरु बनाओ तो भैया एक अपने रंगीला साहब हते।
0: अच्छा, रंगीला?
1: हाँ, रंगीला।
0: कहाँ के हते रंगीला?
1: हाँसी के हते।
0: हाँ,
1: आज भी हैं।
0: अच्छा, उनका रंगीला नाम कौन नाम से जाना तूने?
1: रंगीला, रंगी राही।
0: रंगी राही?
1: हाँ, रंगीला साहब बोला तूने।
0: हाँ,
1: कुशवाहा जी हैं
0: तो उनसे आपने सीखी।
1: हाँ, उन...
0: अच्छा, उनने आपको क्या चीज बताई थी सबसे पहले कि कौन हिसाब से आपने गुरु मानो तूने?
1: अब जो मानो तो क्या, बहुत अच्छा लिखा था।
0: अच्छा, लिखा था वे?
1: हाँ, वे लेखक है।
0: हाँ,
1: तो उनकी लेखनी पे हम लोगों ने गाओ थोड़ा सा, हम लोगों को अच्छा लगा।
0: हाँ,
1: और उनकी वातावरण अच्छा लगा। इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा गा वो सीख गए।
0: बिल्कुल सही बात है। जब आपने देखो लेखनी की बात कही, तो आप जो बता पाए कि आपने उनकी सबसे पहली लेखनी कहती बात जो उन्हें लिख के आपको दी थी कि आपने गाई हो उनकी लिखी बची?
1: देखो
0: कहा गाओ तो आपने ऐसो?
1: अब देखो, उन्हें एक बहुत पहले एक चीज लिखी थी शुरुआत में।
0: हाँ,
1: एक बुंदेलखंड की चीज लिखी थी।
0: हाँ,
1: रंगीला साहब आते हुए।
0: हाँ,
1: और वे लिखते अपने, अब भजन कीर्तन है।
0: हाँ,
1: सब चीजें हैं।
0: हाँ,
1: तो भजन भी लिखते वे, लोकगीत भी लिखते।
0: हाँ,
1: अबे भी लिखते वे,
0: अबे भी लिखते,
1: अबे भी लिखते।
0: हाँ,
1: हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन अब बहुत
0: अच्छा। आपने उनसे संपर्क कब से नहीं करो? आपकी मुलाकात उनसे कब से नहीं हुई?
1: अभी हमारी कम से कम 5-6 साल से,
0: 5-6 साल से उनसे संपर्क नहीं
1: हो पाया है।
0: अच्छा, तो आपने उनकी का चीज गाई का आपको है ध्यान के कौन चीज आपने गाई?
1: अब कैसे अभी याद नहीं है उसमें।
0: हाँ, तो उनने कई चीजें ऐसी आपको?
1: हाँ, चीजें उनने गाई हैं, लिख रही हैं। पार्टी भी हम लोगों की बनी है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मंडल भी है।
0: अच्छा, मंडल भी?
1: मंडल भी है।
0: तो आपने कभी रेडियो बुंदेलखंड पे गाओ?
1: हाँ, गाया है हमने रेडियो बुंदेलखंड पे गाया है।
0: तो भी जो रेडियो बुंदेलखंड पे आपने गीत गाए वे उन्हीं के लिखे गाए या फिर कछु अपने और कवियन के हैं?
1: नहीं, उन्हीं के लिखे गाए हमने।
0: अच्छा, उन्हीं के लिखे?
1: रंगीला साहब के लिखे गाए।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो आपने कछु जो गाओ थे रेडियो बुंदेलखंड पे उनको तंतुरे याद है कि हमने का चीज गाई तू थे?
1: हाँ, हमने एक वो गाई थी तो उनका थोड़ा सा एक गजल थी।
0: हाँ,
1: अभिमान त्याग देना।
0: अच्छा,
1: एक गजल गाई थी हमने, वो बहुत शुरुआत में गाई थी हमने, आज कम से कम 6-7 साल पहले।
0: हाँ,
1: तो थोड़ा सा याद है कि अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है।
0: हाँ,
1: और हंसा की चाल भैया कभी चल नहीं पाया है।
0: हाँ,
1: हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं पाया है। अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है, वो हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं पाया। ये चीज गाई थी
0: आपने? ये चीज गाई?
1: हाँ।
0: अच्छा, जब से आपने उतर से गाबो छोड़ो, मतलब जब उतर रिकॉर्डिंग करे आए थे, उके अलावा फिर बैठे आप कहो मंडल में सभा में के?
1: नहीं, हम जब से वहाँ से छोड़ा सो हम लोग बैठे।
0: हाँ।
1: नहीं पाए हैं।
0: हाँ।
1: अपने काम में बिजी हैं, बच्चे हो गए हैं, तो थोड़ा गाओ बजाओ कम हो गया।
0: सही है, अब गृहस्थ जीवन में
1: समस्याओं से बहुत जूझना पड़ रहा है।
0: सही बात है,
1: क्योंकि कुछ है नहीं अपने पास।

0: मिल जाएगा, जमीन नहीं है।
1: हाँ सही बात है,
0: तो अपन तो मजबूरी कर रहे हैं और फिर पाल रहे हैं।
1: सही बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक संगे संगे जो गावो बजावो है, इसे मनुष्य के जो जीवन है इस पर क्या प्रभाव पड़ती है गाय से?
0: एक जो पुरानी इतिहास याद आते हैं कि हम पहले कैसे थे,
1: हाँ
0: आज क्या है हम लोग।
1: सही बात है
0: भाई, गाने बजाने की एक जो परंपरा है,
1: हाँ
0: बुंदेली भाषाएं हैं,
1: हाँ
0: इनमें सारी भाषाओं का कीर्तन भजन होते हैं।
1: हाँ
0: तो एक जो है कि हम लोग एक इतिहास को उठा लें अपना, कि कोई इतिहास ही से गाया जाता है।
1: हाँ सही बात कह रहे, इतिहास से भी गाया जाता है।
0: तो आज पुराना इतिहास को उठा के देखें अपन, तो पुराने इतिहास में बहुत कुछ मिल रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: और अब पुराने इतिहास तक कौन जा पा रहा है?
1: सही बात,
0: अब नए अपने अपने बना रहे हैं,
1: और नए पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ के
0: नए तरीका से बना रहे हैं।
2: कट फीस में आने लगे।
1: हाँ कट फीस में आने लगे, सही बात कह रहे हैं आप।
2: संगीत और गायन टूटे हुए हृदय की औषधि है।
1: हाँ टूटे हुए हृदय की औषधि है, सही बात कह रहे। और गावे बजावे से अपन खो जो अपनो शरीर है या फिर
2: उमंग
1: पैदा होते ही,
2: शक्ति संचार पैदा हो, शक्ति को संचार पैदा हो,
1: शक्ति को संचार पैदा होते ही
2: गावे।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। और जो नियुक्त के अगर अपन भक्ति में हो जाए या फिर गावे में उतर जाए तो अपनों सब दुख भूल जाते हैं।
2: हाँ पे सही बात है कि जब आदमी
1: गावे में
0: कीर्तन पे आ जाता है तो वो सारी चीजें छोड़ देता
1: है,
0: क्योंकि उसको सतता ही उसमें दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: कि अच्छा और बुरा क्या है, तो अपने आप नियमों का पालन करने लगता है।
1: सही बात है। तो इसके अलावा आपने और कछु सीखो कभू ऐसे, जैसे क्यों पार्टी में गए हो कभू आपकी आमने सामने जवाबी कीर्तन में गए हो?
0: जवाबी वाबी ना लड़ते है ना, आज तक कोई गाया है?
1: अच्छा आपने जवाबी में नहीं गाओ?
0: नहीं नहीं नहीं, हम नहीं गाते हैं ना। हमको हमने सबसे बड़ा समस्या हमारे पास में यही रही है कि हमको इतना समय नहीं रहा है, और ना तो हम इतना गा पाते हैं।
1: सही है,
0: थोड़ा बहुत बहुत हमारे माता दीन भैया आ जाते हैं सो हमने बोल दिया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात। वो कहावत भी नहीं है कि अगर मन में है होलक,
0: हाँ तो खंजड़ी का ढोलक,
1: हाँ है क्या नहीं? सही बात है, अगर मन में होलक है तो ना खंजड़ी चाने ना ढोलक चाने, अपने गुनगुना लेते।
0: अभी पहले की परंपरा में सवेरे 5 बजे जनी मन से उठ जाऊते।
1: हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे,
0: पीसन लगती।
1: हाँ
0: 5 बजे उठ के पीस रही हूँ, गावियों को बड़ा शौक है तो उस टाइम में।
1: हाँ बिल्कुल सही बात,
2: करो रही हूँ गावी रही,
0: गा रही हूँ कम से कम 10-10 किलो पिसिया इसे नहीं।
1: हाँ, सही बात,
0: पूरे परिवार को चक्की पे कहूँ पेशाबे आटो नहीं गई।
1: सही बात कह रहे आप,
0: उनने अपने वही पेशा के वो गावे गावे में उन्हें 10 किलो गेहूँ पीस लो।
1: हाँ,
0: अपने मणि मण को बना के खुआ दो।
1: हाँ, सही बात,
0: लेकिन उन्हें जो ही शौक है तो के हमें गाने हैं।
1: हाँ सुबह चकिया के बहाने गावी लेती,
0: गावी लेती
1: और अपनो काम भी कर लेते हैं, परिवार के खावे को पीस लेती,
2: बीमार नहीं होती
1: और गा लेती
2: है।
1: बीमार होने
0: हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बीमार। आज देखो तुम तो 100-100 साल की बाई आज भी बैठी हैं।
1: हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं,
0: बैठी हैं।
1: हाँ, नहीं, बिल्कुल
0: वो गा रही हैं खूब।
1: अच्छा प्रकाश भैया, आपसे एक बात और जानना चाहे कि आपकी माताजी को कभी आपने देखो गाउत?
0: चकिया पीसर नहीं, हमारी माताजी ने खूब गाया है,
1: है?
0: आप तो बुढ़ी हो गई। खैर
1: नहीं, आप तो बुढ़ी हो गए, लेकिन जब भी अपने परिवार चला उठते हैं, अपने बाली बच्चन हो पिया उठते हैं, उस समय पे तो आपने देखो ही है कि माताजी पीस रहे हैं, गा रहे हैं।
0: खूब गाया उन्हें, खूब उन्हें चक्की चलाई वो।
1: हाँ।
0: चकिया चलाई।
1: हाँ। और आपकी शादी क्या साल की हते जब हो गई थी?
0: हमारी शादी करीब 30-32 साल की लगभग में गई भाई। हाँ। भैया
1: तो आपकी मैसेज को क्या नाम है?
0: हमारी मैसेज का नाम है जानकी देवी कुशवाहा।
1: जानकी देवी कुशवाहा।
0: हाँ।
1: अच्छा कहूँ जानकी देवी ने पीसो?
0: नहीं नहीं नहीं, मिलो
1: उन्हें नहीं, उन्हें नहीं मिलो। अच्छा जब चकियां नहीं हत बची थी पीसवे के लाके, या फिर जे पीस के नहीं जानती थी, या फिर
0: चकियां तो आज भी रखी,
1: चकियां तो आज भी रखी।
0: हाँ, लेकिन उनको
1: लेकिन सुख सुविधाएं मिल गई इन्हें।
0: हाँ,
1: जब पहला चक्की नहीं रखती थी गाँव पुरा में, क्यों चक्की नहीं होती चक्की है? अब तो चक्की हर मोहल्ला में है, हर जगह है,
0: हर जगह चक्की हो गई है।
1: और कछु ट्रैक्टर वाई चक्की चल गई, घर जाके पीस
0: जाकर पीस रही है।
1: तो आपकी ने एक शौक ना गावे को शौक रहो
0: नहीं,
1: ना पीस भी
0: बिल्कुल नहीं,
1: जब जिनने पीसो ही नहीं है तो गाने कहाँ पे भी?
0: अब बात तो मैं ही ना पूरी।
1: हाँ,
0: कि जब गाने का शौक हो जब तो वो पीसे।
1: हाँ, सही बात है,
0: गाने का शौक नहीं है।
1: सही बात,
0: सब सुविधाएं दे रही हैं।
1: हाँ, सब सुविधाएं हो गई। चलो बहुत अच्छी बात प्रकाश भैया आपने जब बताई, और इनने कहा गाँव
0: नहीं है भैया, इनको नहीं मिला मौका।
1: चलो
0: ये गाने का मौका भी हर किसी को थोड़ी मिलता है।
1: सही बात है, सही बात,
0: इसके अंदर एक

0: लगन होती है कि हमको ये काम करना है,
1: सही बात,
0: कोई चीज सीखना है तब कोई उसको सीख पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो फिर इन्हें वो भी नहीं मिलो सीख लाने, अगर भी चकिया चलत होती तो इन्हें परवस पीसने आओ तो गाँव नहीं आते।
0: अनुभव तो सब है लेकिन अब आज का है कि आदमी शर्म अपनी शर्म के मारे जाता।
1: हाँ, हाँ, सही बात कह रहे आप,
0: करन नहीं चाहू।
1: हाँ,
0: हाँ, तो आदमी को सब है।
1: हाँ, सही बात कह रहे,
0: सब करन चाहू।
1: हाँ,
0: लेकिन अब शर्म लगत हर आदमी को।
1: हाँ, में अगर चक्की चले तो
0: अगर गा भी रही वे तो कई वो सुन ना ले, अरे गा सुन नहीं ले,
1: सही बात है,
0: गाने हैं तो गावे में कुछ सुन ले,
1: कोई बात ही नहीं है। बूढ़ी पुरानी अपनी माता है तो देखो तो 4 बजे रात से
0: हमारी माता जी आज एक कम से कम 105 साल की हो गई है।
1: अच्छा,
0: और आज भी उनसे हम कहें तो भी तुमसे 10 बेर घुमा दें।
1: सही बात कह रहे आप, सही बात कह रहे हैं आपके भी, अबे भी गा सके,
0: अबे गा दे भी।
1: चलो बहुत अच्छी बात है प्रकाश भैया, आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के दवाई खिलाने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भैया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी।
2: देखो दोस्तों, जैसे भैया प्रकाश चंद्र कुशवाहा जी और इनसे अपन ने बातचीत या करी है, ये बातन के संगे संगे आप और कह रहे हो कि माता दिन भैया ब्लैक टाइम से प्रकाश भैया जी से बातें कर रहे हैं, मनोरंजन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। सो आप मनोरंजन के लाने एक बढ़िया से गीत को सुनत, गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में और सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। आप सुन लेते हैं एक और बढ़िया से गीत, खोल लेते हैं गीत को आनंद।

0: अंगना में बैठी चार गुनिया बता दो सखी अब कैसो करेंगे। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ई गीत को गा रही थी पिस्ता जी।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होते है, सो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप और ये फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92 19 20 77 49। सो ई नंबर

0: आप फोन लगा के और हमें बता सकते कि हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकते कि हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।